मैं तो मैं बिग सेलर ट्रिकी ट्रिकी ट्रीवल ट्रिकी ट्रीवल मैं वो तो अल्टिमेटा मैं लो अप्रेंडी दे मेमोरिया वाओ क्या फुए सो डरियो क्या फुए सो मायूरुकी ते पेगास्ते उन डेरापे मुसिकल